महाराज जी वाणी चाकते हैं, चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागे, चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे, जे को जन्म मरण ते डरे, सात जना की सरनी परे, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक तांके बल बल जासा। बाबा जी बाणी च आखदे हन, नाव रूप भयो साध संग, नाव रूप भयो साध संग, कहिंदे जड़ा साध संगत है ना, ये समझो एक किश्ती दी तरह है कि तुसी एक किश्ती च सवार हो गए हो, नाव मैंने किश्ती, अते जो साध संगत बैठ गया समझ लो वह किश्ती दे विच बैठ गया है, जो किश्ती उसनू इस जन्म मरण दे पव सागर दे विचों पार कर दे। नाव रूप पयो साध संग, तो इस शब्द दे विच गुरु बाबा जी ने दस्या है कि साधु सानू की रास्ता दसते हैं, की मार्ग दसते हैं। बहुत ही सिंपल जवाब दिता है, बहुत गौर नाल ध्यान नाल सुनो, मन नू जोड़ के, हर मार्ग साधु दसिया, साधु ने ए मार्ग दसिया कि जपिए गुरमंत। साधु कहता है गुरु मंत्र जपो, गुरु मंत्र दा जाप करो, साधु ये मार्ग दसते हैं, हर मार्ग साधु दसिया जपिए गुरमंत। सिंपल गल, आसान गल, साधु ने ये नहीं क्या मेरी पूजा करो, ये नहीं क्या कोई मेरा मंत्र जपो, साधु पूर्ण साधु कदे भी ऐसा नहीं करेगा, वो कहेगा गुरु दा मंत्र जपो, गुरु दे नाल जोड़ेगा, प्रपेयर करेगा, समझाएगा, कड़ेगा, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता जिज्ञासु ओह गुरु दे मंत्र दे नाल जोड़ सके, गुरु दे नाल जोड़ सके। इस दे विच नुक्ता समझन वाला है, साधु ने ए नहीं आख्या कि मेरा मंत्र जपो, कहिंदे गुरु दा मंत्र जपो, साध साधु हर मार्ग साधु दसिया कि जपिए गुरमंत। हुण इत्थे एक विचार है थोड़ी जी जो समझण वाली है, गुरु मंत्र ओही जपेगा जिसनू गुरु मंत्र

सत्संग जी गुरु रामदास पातशाह कल्याण मोहल्ला चौथा प्रभु की जय कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे और ये जो है राग आप श्रवण कर रहे हो ये हमीर कल्याण है। गुरु पातशाह गुरु रामदास महाराज और जो ये रीत है बड़ी पुरातन रीत है पांच ताल दी बराबर दी सवारी है और आज छोटे छोटे बच्चे सामने बैठे हैं मैं कह जरा इन्होंने भी हैरान करिए आज सो गुर दे दे के क्योंकि इस तरह ही बच्चे सीखते हैं उत्साह बढ़ता है गुण गाण नाल ही रब नाल प्यार बनता है जो

क्योंकि अमृत वेला है। तो अमृत वेले जाके पहला काम ये करना है कि कारी स्नान सेवन करो। स्नान भी हो गया, सिमरन भी कर लिया, इसका फल की मिलेगा।

ही चले। ले मर्दाने तू साडे बस्तर चढ़, असी वेई नदी विच इशनान कर। मर्दाने ने बस्तर पकड़े, हजूर वेई नदी विच प्रवेश करदे हन, चुब्बी मारदे हन। तेरी सास संगत बाहर नहीं निकले आखो श्री वाह। बाबे ने ऐसी चुप्पी मारी, मर्दाना बड़ा चिर उड़ीकदा रे। पातशाह हुण बाहर आउंदे हन, हुण पानी विचों बाहर निकलदे, पर हजूर निकले। मर्दाना नदी दे कंडे ते कदे इधर भज्जा जांदा है, बाबा किधर गए हो, कदे इधर भज्जा। दिन चढ़ गया, अजे भी बाबा बाहर गया। कहरी सास संगत बेबे नानकी नू जाके लोका ने कहा, धन गुरु नानक पातशाह जी दे प्यार वाले ने जाके कहा, बेबे तेरे वीर ने वेई नदी विच चुभी मारी है, बाहर नहीं आया। प्रेमी तो अखां विचों पानी बहा रहे हैं, जिन्हां दे अंदर गुरु नानक दा प्यार सी उन्हां दे अखां विचों तो प्यार दे आंसू जा रहे हैं। पर जो लोग नुक्ताचीन सन, नास्तिक सन, उन्होंने कहा गुरु नानक डूब गए आखो श्री वाह। दौलत खान वाली हिसाब किताब करना सी मोदी खाने का, मोदी खाना गरीबा नु लुटा दिता है। इस भाई जराम नू भी बड़ी उदासी, पर बेबे नानकी ने कहा तुसी उदास ना हो। नानकी तलवंडी तो नाल लेके आया सा नानक नो, मैं ते कालू ने कहा सी जयराम इस नो किसी कम लाओ, मोदी खाना ले दिता। पर आज पता नहीं की होया, बेबे ने कहा नहीं तुसी उदास ना हो, मेरा वीर कदे डूब नहीं सकता, ओ तां डूबियां नूं उतारन वास्ते आया। किसे महापुरुष ने लिखे चंद्रमा दी मिसाल दित्ती है गुरु दी, भी चंद्रमा की करदा है ते गुरु की करदा। तो लिखे कालू चंद दिया नूर भरे चन्ना, चन्नो सौ गुणा वध लिशकारदा है, चढ़े चंद ता डूबदा तारिया नू, तू ता डूबिया होया नू। चंद्रमा चढ़ जाए तारिया दी लो मधम पै जांदी, फिर चंद्रमा दुनिया नू रोशनी देंदा है, दे मथे ते कालक लगी। स्याही अपनी चन्न तू नहीं लेंदी, तू लखां दी स्याही उतारदा है, फिर उच्चा वसना अर्श दे किंगरे ते, पर नीवियां ते चाती मार। तो प्यारी सास संगत सारे सुल्तानपुर च बड़ा प्रोपेगंडा हो रहा है, आखिरकार हजूर वेई नदी दे विच भी मार के किथे पहुंचे, सचखंड पहुंचे। अगे नूर ही नूर है, सचखंड दे दरवाजे अगे हजूर ने तकिया, लखाई मोहम्मद, लखाई रामचंद, लखाई कृष्ण, लखाई गोरख, लखाई देवी देवते खड़ोते। तो साहबाने थे शब्द उच्चारण कीते है, जित दर लख मोहम्मदा, लख ब्रह्मा विष्णु महेश, लख लख राम वडीरिया, लख राही लख। ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर तो दर्ज नहीं है,
ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਐ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਪਾਉਣਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਖੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਰਸਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼

तीर लक्षण आशा जी दीवार न लगा के कीर्तन भी समाप्ति उस उपरंत अरदास गुरु के हुक्मनामे ए मर्यादा उदास ने बेनती की सी भी आज दी चाह सेवक वालों तो मैं की सेवा कर सकता हाँ तो जो तुसी प्यार दिता है और ए भी गुरु दी प्रेरणा से तो उस संसार अज चाह दा लंगर तैयार है और मैं तो ये बेनती की थी कि कई प्रेमी कहन लगे पाही जी साडा भी हिस्सा विच पा आखो श्री भाई कई प्रेमी ते नाल उन्होंने कहा भी साडा नाम ना लई ते असी भी जिना जिना ते गुरु ने मेहर की थी सेवका नाल हित कीता है तो उन्होंने चाह दा लंगर तैयार कीता है तो हुण प्यारी साध संगत सारे प्यार नाल क्योंकि अज आसा दीवार दा कीर्तन भी पूरा हो गया तो मैं चाहूंगा अखीरला छंद अज आसा राग विच आसा राग तो आओ अखीरला ये छंद है अज आसा जी दीवार दे कीर्तन दा भोग पै रहा है सर्व आसा पूर्णी आसा जी दीवार तो ये छंद आपां आसा राग विच लगाउंदे

आ जेड़ी तेरे कोल किताब है ते तू आखने ए किताब रब दे घर दीआं गल्लां दसदी भाव जेड़ी आ तेरे कोल बाणी दी पोथी है ते जेड़ी तू आखने तुरकी बाणी आई रब दे घर दीआं गल्लां दसदी है ता रब दे घर दी बनी हुई एक बुझारत अज सुलझा दे रब दे घर विच हिंदू चंगा है जां मुसलमान चंगा है सवाल कीता है काजी मौलाना ने गुरु नानक अग्गे भाई साहब भाई गुरदास जी।

परम सम्मान योग गुरु खालसा साहिब सिंह जी, आप जी बड़े प्यार साहब श्रद्धा साहब धन धन श्री गोबिंद सिंह साहब जी महाराज तिना का धन्यवाद करते हुए खालसा पंथ के सज्जन हारे दाता की सिफत सलाह अपने शुकराना करने बाणी नाल जुड़ा गुरसिख साध संगत ने यत्न किया है। बहुत ही शलाघा योग कदम है। एक गल याद रखने वाली है, वो है अपने पिता का विरसा। जे असी अपने पिता के वारस हां, जायदाद असा पिता की सामनी है, हक असी जताते हां, ते फिर ये शब्द जो कहे हैं गुरु साहब जी ने कहो जहा खालसा साजिया तिख्या है, आत्म रस जो ज्ञान ही सो है खालस देव, आत्म रस जो ज्ञान ही सो है खालस देव, प्रभ मैं मोह मैं तास मैं रंजक नाहि न भेद। गुरु नानक की घाटी प्रथा है, गुरु चेला बनिया चेला गुरु बने, इस करके कोई गुरु अते चेले विच भेद नहीं रहा। एक गल होर याद रखने वाली है, गुरु साहब ने सानू गल ला लाया आनंदपुर का वाकया याद करो, सिंह विदावा लिख के दे गए आते अपने घर प्रत आए, उन्होंने मरी हुई अणख न जगाया कि ने घर दिया मातावान भैन सिंघणियां ने, मैं जो तत् विचारिया है अगर अजकल दिया पत्नियां भैन मातावान इस गल का प्रण कर लैन के गुरु दे सिख अखवाण वाले अते गुरु नूं विदावा लिख के चल रहे गुरसिख अगर गुरु दे बनना चाहते हैं, अगर गुरु का अखवाना चाहते हैं तो गुरां का हुक्म मने, ऐसी गल ना होवे। असी भुले हुए छेती घर नूं प्रत आईए ते अच्छा है, ऐसा ना होवे के घर प्रत के फिर जिनी कुर्बानी चाली सिंघां नूं करनी पई इतिहास आपके सामने है। सो ऐसे दशमेश पिता जिन्हां ने सानू गरीबां नूं लताड़िया होया नूं गले लाया, ऐसे शहनशाह मतलब भाई साहब भाई नानदास साहब जी ने जो शुभ वचन कहे हैं, आप प्यार साहब सुनो।

अनक जन्म बीती अन परमाई, अनक जन्म बीती अन परमाई, कर वासना दे दुत्तर माई दिन रैन।

सब कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने उना दे तन मन अर्पण करी जिन्हां ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उना ओ परचून दे मालिक नहीं हुंदे, ओ तां थोक दे व्यापारी हुंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा वाहिगुरु तों।

जन्म मनुख भक्ति करे जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहने ने बड़ा सुखैन तरीका है महापुरुषां दे चरणां दी पूजा कर।

ते जन कब हूं नहाए, ते जन कब हूं नहाए, ताल जो जाने पाशा, ताल जो जाने पाशा, ते जन कब हूं नहाए।

छतरी को पूत हां, चढ़दी कला दी बाणी देखो गुरु गोबिंद सिंह। छतरी को पूत हां ब्राह्मण को ना है, छतरी को पूत हां ब्राह्मण को ना है, कहता पे आवत हां जो करो और जंजार जितो ग्रह को तोहे त्याग कहां जितता मैं धरो, और जंजार जितो ग्रह को तोहे त्याग कहां चिपता मैं धरो, अब रीझ के देहो वह हमको जब बेनती कर जोर करो, जब आम की आग निदान बढ़े।

खिलौना। अस खिलौना का मतलब है कि शस्त्रां का खिलाड़ी, शस्त्रां का धनी। अस खिलौना।

लाख जन्म सवार दरगे सच्ची दरगाह जाए सच्चा बिर मल्या सच्ची दरगाह जाए सच्चा बिर मल्या सच्ची दरगाह जाए सच्चा बिर मल्या जेहा चीरी लिखिया तेहे कर्म कमाए कल्ले आए नानका।

क्योंकि अमृत वेला है, तो अमृत वेले जाके पहला काम ही ये करना है कि कारी स्नान सिमर करो। स्नान भी हो गया, सिमरन भी कर लिया, इसका फल की मिले, तो अगली पंक्ति जरूर फरमाउंदे कारी स्नान सिमर प्रभ अपना।

अच्छा आशा जी दीवार दा लगा के कीर्तन समाप्ति उस उपरंत अरदास गुरु के हुकुमनामे ए मर्यादा उदास ने बेनती की सी भी आई दी चाह सेवक वालों तो मैं की सेवा कर सकता हाँ तो जो तुसी प्यार दिता है और ये भी गुरु की प्रेरणा से तो उस संसार अज चाह दा लंगर तैयार है और मैं तो एवं बेनती की कई प्रेमी कह लगे भाई जी साडा भी हिस्सा विच पा आखो श्री भाई कई प्रेमी ते नाल उन्होंने कहा भी साडा नाम ना ले लो ते असी भी जिन्हां जिन्हां ते गुरु ने मेहर की सेवका नाल हित किया है तो उन्होंने चाह का लंगर तैयार किया है तो हम प्यारी सास संगत सारे प्यार नाल क्योंकि अज आशा दीवार का कीर्तन भी पूरा हो गया तो मैं चाहूंगा अखीरला छंद अज आशा राग विच आशा राग तो आओ अखीरला ये छंद है अज आशा जी दीवार के कीर्तन का भोग पै रहा है सर्व आशा पूर्णी आशा जी दीवार तो ये छंद आप आशा राग च लगा

शासन जी सेवक इथे आए हैं संतान आदियों प्यार नाल यानी बलदेव सिंह जी मेरे बरफरदार भी हैं ते ज्ञानी भी हैं महापुरुष भी हैं क्योंकि गुरु घर की सेवा जो करते हैं इन्होंने भी बड़ा प्यार किया करना बनता भी है क्यों ए बाबा जी दे संगी फिर निकटवर्ती संगी हैं तो बड़ा प्यार किया है मैं अरदास करदा हाँ गुरु इन्हों चढ़दिया करा आप जी की सेवा विच इन्हों पूरा माण गुरु बख्शे तो अज भी जो चाह का प्रोग्राम है ज्ञानी जी उन्होंने काफी सहयोग दिता है तो ये भी इन्हों का प्यार है हुण अरदास होगी तो मैं बेनती करांगा भी गुरु साहब अपने सुख स्थान पर पहुंचा के तो कोई भी माई भाई जान की खेचल ना करे सारे ने सेवकों की यह सेवा प्रवान करनी आस करता हाँ बेनती।

नानमेर शरीर का कृत कृतवा जुग जुग फेर बटाइया ज्ञानी बुझेता सचुग्रह संतो का धर्म ग्रथवाओ त्रितरा।

बूझत दीपक मिलत तिलत ऐसो सहाय हरि। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

0: के साधु के चरण।
1: भगवान राम
2: प्रेरणी की चुग्गी विच पहुंचे भगवान, जिना रहा तू आयो ना रहा तू मैं सदके जा। कुछ आदास आया पीलनी ने त्रेता युग दे मालिक भगवान रामचंद्र जी बैठ गए। महाराज मैं गरीबनी ते बख्शिश कीती है ना, नहीं पीरनी तेरे प्यार तेरी जे पीरनी भुख लगी है। आखो श्रीवाल पीरनी डाढ़ी भुख लगी कुछ खिला। रब नू बड़ी भुख लगी। बाबा जी कलेरा वाले बाबा जी बाबा नंद सिंह जी महाराज प्राप्ति वाले महापुरुष, नाम जप के नाम दी प्राप्ति, नाम जपना होर चीज है नाम दी प्राप्ति हो। जेड़े परमार्थ दे राह ते तुरे न भाई उन्हां दे भी चरण चुमी है तुरे तां हन, जेड़ा तुरे है ओही पहुंचण दी आस रख सकदा है। कदे ना कदे सी ते जेड़ा परमार्थ दे राह ते तुरिया ही नहीं है वो पहुंच किवें सकदा, गली बाती तो पहुंचिया नहीं जांदा। भाई गुरदास जी ने लिखे है पूछ तो है पधक से मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। गल्ला नाल आजकल दी दुनिया गल्ला नाल ज्ञान चाहुंदी है, पर भाई महापुरुषां दा कथन है गल्लां नाल ज्ञान नहीं मिलदा। ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार, ए तो बड़ी करड़ी मंसल है औखी काटी। पर जेड़े तुर पैंदे हन ते करदे हन साईं दे मिलन दे कर्म चंगे फिर उन्हां नूं प्राप्ति हो जांदी है। ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार, कर्म मिले ता पाइए होर हिकमत हुकम हुआर। कर्म कर महापुरुषां दी संगत करके सानू भाई चंगे कर्मां दी प्राप्ति हो जांदी। कई कहंदे जी संतां दी महापुरुषां दी संगत कीतियां की मिलदा, ते बाबा जी कहंदे सन केड़ी वस्तु नहीं मिलदी। आखो श्री वाहिगुरु। महापुरुषां दी संगत करके केड़ी वस्तु नहीं मिलदी। चार पदार्थ जे को मांगे फिर हजूर कहंदे सात जना की सेवा लगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। फरीद नूं भी पता लगा सी कि कोई माता है वो दस लेंदी है, अज रब तुठा है अज रब रुस गया है, चलो मना उस माता कोल चलिए। मैं रब नूं मनाउण वास्ते रब नूं रिझाउण वास्ते कई कर्म कीते हन पर अजे ज़ियारत नहीं होई कि ओ सिंगार मिलन के ताहीं।